0: David.
1: Hmm.
0: मेरी फ्रेंड है।
1: हाथ धोए।
0: मीन्स बहुत अच्छी फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड जैसी फ्रेंड है। इट्स कॉम्प्लिकेटेड।
1: इट्स सिंपल। लव।
0: लव? आपने भी किया था लव?
1: था, किया है और हमेशा करता रहूंगा।

हजार बार सोचा, कह दू कि फ्रेंड नहीं मेरी गर्लफ्रेंड है तू, पर सपने टूट जाने का डर कभी दिल से गया ही नहीं।

0: चॉइस एफएम 90.4 मेगाहर्ट्ज।
1: लगातले
2: यहाँ भोजन के हो आछ आटी गरे लाउरे नि दाकी
1: देमा
2: ना नाय त जुवा डाडा
1: ल ल छन्ने।